Kama tripurani tanu, vidita sakala sansan. Kaushik suno, vanda ehman, kutila kala vasa nijakula ghala. Tuma hata kahu jo chaha ubara, kahita taap bal rosho hamara. Sur samad karani karahi, kahina janavahi aap. Nityaman rana payani, kayaan karahi pralaap. परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु नकुल हि प्रसंसि कालहु डरहि न रण रघुवंशि विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होइ जो तुमहि डराई सुनि विदु गुण बचन रघुपति के उखरे पटल पर